0: You have been listening to carols sung by Bhagwan's students on Christmas morning.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
3: Sorath Mahalla Nava Hare Nar Eh Sachi Ji Tar Sagal Jagat Hai Jaise Supna Bin Sat Lagat Na Bar Rahao Baru Peet Banai Rach Pach Rahat Nahi Din Char तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार अज हूं समझ कश बिगरयो नान पज ले ना मुरार कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लागेओ दुख में संग ना होई रहाओ दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन सिओ लागे जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग शाड़ सब भागे कहो

मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जय बा नेत्र सोतर सचराते जल बूजी तुझे बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुबधा विच बैराग ना होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर न दूजा पाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपरे अपार अगम्य गोचर कहना कीम ना पाई सुन समाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भक्त दरणामं मन मुख झूठ लह पै मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथै का क्या कथिया पाई चलो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवै निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चालै पाई होर क्या को करे चितराई एक परम भुला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किश होवै अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलिया कृपा कीनी एक अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण परगासिया गुण मैं ज्ञान ध्यान नाम मन पावै कह कहावै तत्तो तत्त वखान शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बोरान पूरा बैरागी सहज सुपागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म धर्म बंधकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसै नाम विसारी ए माया जग मोहनी पाई कर्म सबे बेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुखी उपजै पाई सो आत्म तत्त विचारी रहाओ।

मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए, तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए, पत प्रवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान, आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण, गुरबिन हुक्म ना बूझिए प्यारे साचे साचा तान, हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार, हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार, गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चले कारज सार, हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जद हो जाए, हुक्मे बन चलाइए प्यारे मन मुख लह सजाए, हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए, हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमे दोए, हुक्मे पवै पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए, हुक्म सियापै सहाका प्यारे सच मिलै वड्याई होए, आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाओ, जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौतन बलिहारे जाओ, नाओ मिलै संतोखियां प्यारे नदरी मेल मिलाओ, काया कागद जेखिए प्यारे मन मसवाणी तार, ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार, तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखे और तार, सोरठ महला पहला पहला दो तुगी, तू गुणदाताओ निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए, हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए,

बिख माया चित मोहया पाई चतराई पत खोए चित में ठाकर सच वसै पाई जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई रूडो लाल चलूल जे मन हर सिओ बैरागिए पाई दर कर साच अकूल। पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए पाई मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल में बुढ़ तेहे। गुर बिन अलख न लखिए पाई जग बूढ़े पत खोए मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी पाई अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो भी दे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान। ईंधन अधिक उसके लिए पाई पाव करन चक पाए खिन पल नाम हृदय वसै पाई नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी एको अंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो तुर तू रखदा आया प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो हर नाक समार पजाया। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो मनमुख परम भुलाया हर जी एह तेरी वड्याई। भगतां की पैज रख तू स्वामी भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै काल ना नेड़ै जाई केवल राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सह सुबाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लहि जासी मनमुख फीका आ लाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी तू एको पुरख बिदाता हों मैं मार मन सामने समाणी गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब का इस्वार नहारा। ओना की रीस करे सो विगुच्चै जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे।

गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधकाई। वेद पढ़ै तै वाद वखाणै बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटै गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर सचे सचियारा उन्हां दी सोभा जुग जुग होई कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै जिन हर राखिया उर तारा। सोरठ महला तीजा दो तुकी निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई। राम नाम चित लाए हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लय रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे सच है शब्द विचार। पौजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़ै चाड़। मनूरै ते कंचन पय पाई गुर पारस मेल मिलाए। आप छोड़ नाव मन वसिया पाई ज्योति ज्योत मिलाए। हों वारी हों वारने पाई सतगुर को सदबलिहारै जाओ। नाम निधान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाओ। गुरबिन सहज ना उपजै पाई पूछो ज्ञानियां जाए। सतगुर की सेवा सदा कर पाई विचों आप गवाए। गुरमति पौ उपजै पाई पौ करनी सचसार। प्रेम पदार्थ पाईऐ पाई सच नाम आधार। जो सतगुर सेवै अपना पाई तिनकै हों लागौ पाए। जन्म सवारी अपनी पाई कुलपी लई बखसाए। सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए। नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागै कोए। सोरठ महला तीजा हर जियो सबदे जापदा पाई पूरे भाग मिलाए। सदा सुख सुहागणी पाई आंदन रतिया रंग लाए।

जपिया भगवंता नाम दानो दे जन अपने दुख दर्द का हंता रहाओ। जा कै घर सब किश है पाई नौनिद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवै पाई ऊंचा गमया पार। जी जंत प्रतपालदा पाई नितनित करदा सार सतगुर पूरा भेटिया पाई शब्द मिलावनहार। सच्चे चरण सिरेविय पाई परंपा हो वै नास मिल संत सभा मन मांझिए पाई हर कै नाम निवास। मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई कमल होवै प्रगास गुर बचनी सुखी उपजै पाई सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िया पाई होई है सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई पेखै सुने हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई तित दिन मरिया चूर करण करावण समर्थो पाई सर्व कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय पाई हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगासिया पाई हृदय होवै प्रगास। प्रगट भया प्रताप प्रपाई मौल्या तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया पाई अहन सलागा पाओ। रसना राम रवै सदा पाई साचा साध सुआओ। करनी सुन सुन जीविया पाई नेचर पाया थाओ। जिस पर तीत न आवे पाई सो जीअड़ा जल जाओ। बहुगुण मेरे साहेब पाई हौ तिसकै भर जाओ। ओ निर्गुणी आरे पालदा पाई दे निथावे थाओ। रिजिक संबाहे सास सास पाई गूढ़ा जाका नाओ। जिस गुरसा चा पेटिया पाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन कड़ी ना जीविया पाई सर्व कला भरपूर। सास ग्रास ना विसरै पाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया पाई सर्व रहा भरपूर। जिन्ना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मरदे चूर। अंचल लाए तराया पाई पौ जल दुख संसार कर कृपा नजर निहालिया पाई की तुने अंग अपार। मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार। नानक ते शरणागति पाई जे किल बिख कटन हार। सोरठ महला पंजवां मात गर्भ दुख सागरो प्यारे तह अपना नाम जपाया बाहर काढ़ बिख पसरिया प्यारे माया मोह वधाया। जिसनों कीतो कर्म आप प्यारे तिस पूरा गुरु मिलाया सो आरा दे सास सास प्यारे राम नाम लिवलाया। मन तन तेरी

मिठा करके खाया प्यारे तिन तन कीता रोग, कौड़ा होए प्रतिष्ठिया प्यारे तिस्ते उपजा सोग। भोग पुंचाए पुलायन प्यारे उतरे नहीं विजोग, जो गुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग। माया लालच अटिया प्यारे चेतना आवै मूल, जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़। बिललाट करे बहुतेरिया प्यारे उतरे नाही सूल, जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल। सात संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए, जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए। मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए, जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए। संजम सहस स्याण पां प्यारे एक ना चली नाल, जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल। होंदी वसना जातिया प्यारे कूम न चली नाल, सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल। सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे, अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे। दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे, जिस पावै तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे। समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान, ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान। हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान, सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान। सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे। प्यारे इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म्या नेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध बिका रहाओ। मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरयो बन माही, तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही। मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा, अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा। पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खटकर मारत रहता, हाँ हो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता। जोग सिद्ध आसन चौरासी ये पी कर कर रहया, वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया। राज लीला राजन की रचना करया हुक्म्या फारा, सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा। हर कीर्त साध संगत है सिर करमन कह कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल, दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा। राग सोरठ वार महले चौथे की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी, जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए। ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग, पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग। सदा सिंगारी नाओ मनो कदे ना मैल पतंग,
देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर भावै नानका करमणि सब सच महला चौथा सोरठ काम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत ना काहूं डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हाँ मैं जल दे जल मोए भ्रम आए दूजे पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल पाए नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान गुरमुख मोए जीवन दे परवान है मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिया जे गुर कै शब्द समाहे पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम ते आई है सतसंगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइय सलोक महला तीजा पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास मोह ठगौली पाईयन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास जिनी गुरमुख नाम ना चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सत्या शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चे नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी। जो मंत्र मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी। गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यो अंकस है अहरन ज्यो सिर दे, मन तन आगे रख कै उबी सेव करे। यो गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी। गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस हो